जगमग जगमग होगी जग अंदर सुनाई और इतना बदल दितिया सिख बड़ा ता सूरमा सचे अखा।

0: सतगुरु तेरे चोग न्यारे ने, बंदी छोड़ सतगुरु तेरे चोग न्यारे ने।
1: यह है सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का महान करनी नामा। एक बार सारी संग श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की महान कमाई का ध्यान करके प्यार आखू सतनाम श्री वाहिगुरु। इन शब्दों विचार समाप्ति वाल लेके आना। ढाडी दरबार प्रबंधकों वालों हुक्म सी के दस दे ढाडी जिथे ने तीन दिन हाजरी भरनी, अज तीजा दिन सी। आप जी ने बेअंत मुहब्बत बख्शिश की, आप संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के चरणों में समुची संगत की चढ़ती कला वास्ते अरदास करता हाँ। संगत विच संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाला के नगर रोडे तो भाई साहब जसवीर सिंह होरी बैठे, बहुत मुहब्बत करते ने, बहुत हार्ड वर्क करके मैं वेखदा हाँ कि वह बिल्कुल हर रोज गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में नमस्कार कर आते, ढाडी कला बहुत प्यार करते हैं। तो संगत विच मेरे परम प्यारे छोटे वीर सरदार रणजीत सिंह होरी बैठे ने, बड़ी मुहब्बत आप जी ने बेअंत मुहब्बत बख्शिश की। भावें ना लैने मुनासिब नहीं, पर फिर भी ढाडी कला प्रफुल्लित करने जिन्हों का योगदान है जिक्र करना बनता है। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जगदीश सिंह जी बटाला तीन दिन समुचे जथे ने साढ़े ढाडी जथे की बहुत बड़ी सेवा की। यह ढाडी जथा सी, यह तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने हाजरी भरवानी सी। मेरे नाल जिहड़ा असली जत्था है उन्हां दा हले वीजा नहीं लग्गिया। ये दोनों मुंडे ढाडी ने जिहड़े एफ सपोर्ट रहिंदे ने, काम करदे ने, सरंगी मास्टर भाई हरदीप सिंह ये इत्थे ही रहिंदे ने। टाइमली असीं आप जी की सेवा उत्ते हाजिर होए हां। बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गुरचरण सिंह बाठ पिंड रायपुर फराला

0: होए पौड़ी। देवन हार दातार कित मुख सालाहिय, जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिय। कोई ना किस ही वस सबना एक धार, पाले बालक वाग दे कै आप कार। करदा अनद विनोद किछु ना जानिए, सर्व धार समरथ हौ तिस कुरबाणिय। गाइए रात दिनंत गावन जोगिया, जो गुर की पैरी पाहे तिनी हर रस भोगिया। श्लोक महला पंजवा। भीड़ हो मोकलाई की तियन, सब रखे कुटुंबे नाल।
1: मोकलाई पाठ इकट्ठा ही करना, जिदा ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है। भीड़ हो मोकलाई की तियन, सब रखे कुटुंबे नाल।
0: कारज आप सवारियन, सो प्रभ सदा सपाल।

0: मन साधारण दुर्जन सेती ने हो रचायो दस विखा मैं कारण ऊणी नाही झूणी नाही नाही किसै विहोणी फिर छैल छबीला छड गवायो दुरमत कर्म विहोणी ना हो पुल्ली ना हो चुकी ना मैं नाही दोसा जित हो लाई तित हो लगी तू सुन सच संदेसा।
1: पिछली पंक्ति जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है ना हो भुली ना हो चुकी ना मैं, ये जड़ा पाठ कई बार नामे कट्ठा पढ़ जांदे है कई गुरमुख नामे नहीं इनू इत्थे जिवें उच्चारण किया गया ना मैं नाही दोसा जित हो लाई तित हो लागी तू सुन सच संदेसा।
0: साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी
1: बिंदियां तो रहत ही पाठ दोवें करने साई सुहागण साई।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington
3: 1550 KRPI Radio ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਰੀ।
0: ਸੱਚ ਸੰਦੇਸਾ ਸਾਈ

का दुख लायण, गुर का शब्द अमृत रस खायण, नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटायण। महला पंजवा, हुकम उछलै हुकमे रहै, हुकमे दुख सुख सम कर सहै,

0: पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हौ जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे दिन सरैण तेरा नाओ सदा सद जापिय तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापिय रोग सोग दुख वंजै जिस नाओ मन वसै तिसै परापत लाल जो गुर सबदी रसै।
1: हां जी रोग सोग दुख वंजै वावे दी टिप्पी नन्हियां दुलावां दे नाल रोग सोग दुख वंजै जिस नाओ मन वसै वसै पाठ पूला फिर अगे तिसह प्राप्त लाल जो गुर सबदी रसै ए भी पूला रसै वसै ए पोले उचारण दोवें करने कसणे नहीं इसे तरह वसै रसै। हां जी

0: हाँ जी, महंगा पाठ जिवें ज्ञान जी ने उचारण किया है प्राकोए, एदा उचारण करना प्राकोए, थोड़ा जा कोए पाठ तेजी दे नाल, परा जिहड़ा है ओह लमका के प्राकोए, जीद है जी लमका के ऐड़ा ते ददे नूं दलावां दै, ए निखेड़ के वखरे वखरे। हाँ जी,
1: गुर चेले रह रास की, नानक सलामत थीवदै,

उस पाठ इकट्ठा ही करना जास धूस नहीं करना जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है जां सुदोष कस के इत्थे विश्राम लाउणा तां लहणा टिक्योण

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उगर सैन खोराज अभय भगतें जन दियो।

श्री गुरु राज अब चले अटल, आद पुरख फुरमायो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर आई भट्टां दी बाणी और उस दा एक पावन पवित्र सोईया है। साडे देश दे धार्मिक ऋषि मुनिया ने युगां दी बकायदा वंड कीती है और कहिंदे ने चार युग ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इंज कह लईए ये चार कलासां ने, या कह लईए ये चार स्कूल ने। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, बच्चा है, थोड़ा जिहा प्रौढ़ होया है, जवान होया है, अधकड़ होया है और बुजुर्ग हो गया है, बुढ़ा हो गया है। तो बच्चे लई होर स्कूल है, वड्डे लई होर स्कूल है, नौजवान लई होर स्कूल है। जैसे सारे स्कूलां विच पढ़ाण वाले ते मास्टरी कहलांदे ने, अध्यापक ही कहलांदे ने, टीचर ही कहलांदे ने, लेकिन फिर भी बड़ा अंतर है। जो प्राइमरी नूं पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, जो मिडिल क्लास नूं पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो हाई स्कूल विच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो कॉलेज विच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है। लेकिन फिर भी उना दी जानकारी, उना दे प्राण दे तौर तरीकियां विच बड़ा भारी अंतर है। नाम एक है, काम एक नहीं। उना दी जिम्मेवारी समय दे नाल और स्कूलां दे नाल वद्दी। सतयुग एक ऐसा युग से जिसनु कह दईए इते सिर्फ नर्सरी दी क्लास है, सिर्फ इत्थे आना है, बस थोड़ा जिहा बैठना है, उठना है।

वक्त पास कर रहे हैं तो वक्त पास करने लिए कोई खिडौने चाहिए ने। तो इस तरह दे नर्सरी दी क्लास दे खिडौने रखे जाते हैं। इंज कह लिए बच्चे खेडन लिए आते हैं, सिर्फ खेडन लिए। छोटे छोटे बच्चे आए ने सिर्फ खेडन लिए। अध्यापक एक चाहिदा है, एक टीचर चाहिदा है, ए बच्चे बस ढंग नाल खेड सकन, सारियां नु खिडौने मिल सकन और थोड़ा जिहा विश्राम कर सकन, फिर अपने घरां नु जान, समा पास करन। सतयुग दा दौर ऐसा सी जैसे मासूम बच्चा छल कपट तो रहत है, वैर विरोध तो रहत है और वासना अहंकार तो भी रहत है। बड़ी समान दृष्टि है, वितक्रिया तो भी उच्चा है। तो सतयुग मनुखता दा आद सी, अजे जन्म ही होया सी, बहुत सारिया कोई इसदिया लोड़ा नहीं सन, बहुत लंबी चौड़ी समझ भी नहीं सी। समझ होवे ता समझ नो विकसित करन लई कोई समझाने वाला चाहिदा हुंदा है। अजे ए हालत इस युग दी इस बच्चे दी नहीं सी। इस वास्ते कहिंदे ने एक बोना अवतार, एक छोटा अवतार, बावन अवतार आया। सतयुग तय माण्यो छलियो बल बावन पायो। लंबी शिक्षा दी, लंबी पढ़ाई दी लोड़ नहीं सी, सिर्फ देख रेख करनी सी। ए ढंग नाल खेडन, ए ढंग नाल बैठन, ए खिडौणियां नूं तोड़न ना, सिर्फ खेडन। तो बस इतनी ही देख रेख करनी सी। यही कारण है कि सतयुग नूं छाणीए पढ़िए कोई बहुती संघर्ष वाली जिंदगी नहीं सी और बहुत कोई उसारू कम भी नहीं सन। पहाड़ां दी कंधरां दे चलोकी रहिंदे सन, रुखां दी छां ही उनां दे महल सन, जंगल दे फल फूल खा लेने, कंदमूल खा लेने उनां दी खुराक सी, दरख्तां दी छाल नाल अपना तन ढकण लेना या नगन रहना, बस ए उनां दा पहरावा सी। जमीन ते सो रहना ए इनां दा बिस्तर सी और एक इलाके च लोड़ां दी पूर्ति नहीं होनी, दूसरे चले गए, तीसरे चले गए, चौथे चले गए, इस तरह भ्रमण करदे रहना। नहीं दरख्तां नालों कोई फल फूल मिले तो किसी जंगली जानवर दा शिकार करके उसका मांस खा लेना, बस यही जीवन सी आदि मनुख दा। आदवासी आदि मनुख किसी भी देश दे तुसी चले जाओ इसी तरीके नाल जीव दे सन। और आदि मनुख उन्हां नू अज भी असी कहिंदे आ तो मैज इस आधार ते कि कईयां ने आदि मनुख वाला रहन सहन खान पान अजे भी नहीं छोड़िया। अजे भी जंगलां दे च, अजे भी नगन, अजे भी जानवरां दा शिकार करके खाना, अजे भी दरख्तां दे पत्तियां नाल अपने तन ढकणे, अजे भी पशुआं दी खल नाल अपनी चोली बनानी, अपना दामन ढकना, ओही पुरानी तर्ज़े जिंदगी। तो किसे बहुत वड्डे अवतार दी लोड़ ना पई। समा लंघदा गया, ए गोड़ियां दे भार चलन वाला ए बच्चा, खिडौणियां नाल खेडन वाला ए बच्चा थोड़ा वड्डा होया है। तो इसनूं तहजीब सिखानी सी, इसनूं उठना बैठना सिखाना सी, इसनूं बोलना सिखाना सी, इसनूं पहनना सिखाना सी, इनूं खाना पीना सिखाना सी, जिंदगी दी हर तरह दी मर्यादा इसनूं देनी सी। तो फिर आ गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ए प्राइमरी स्कूल दे अध्यापक मर्यादा सिखानी है, उठना बैठना सिखाना है। कुछ राजनीति शुरू हो गई सी, परिवारिक जिंदगी शुरू हो गई सी, कुछ अर्थव्यवस्था दा पसारा भी

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musiala, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत पेश।

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में

मैं तेरे बराबर का किथे बिस्माग नाल भर जांदा है। श्रद्धा मनुख नूं देवता बना देंदी है, प्रेम मनुख नूं मनुख बनांदा है, लोभ ते मनुख नूं पशु बना देंदा है। या इंज कह लईए, असी संबंध बनांदे हां पशु करके, मनुख करके, देवता करके। श्रद्धा मनुख नूं मनुख नहीं रहण देंदी, देवता बना देंदी, बड़ा चानना प्रदान कर देंदी है, बड़ी रोशनी दे देंदी, बड़ा प्रकाश हृदय च हो जांदा है श्रद्धा करके, भावना करके। हुण मैं अर्ज करा, एक चौथा संबंध है। पहला संबंध लोभ दा, जो मनुख नूं भी पशु बना देंदा है, पशु ते पशु है। दूजा संबंध प्रेम दा, ये मानव दे अंदर मानवता नूं जन्म देंदा है। तीसरा संबंध है श्रद्धा दा, ये मनुख नूं देवता बना देंदा है। चौथा संबंध है भगती दा, ये मनुख नूं परमात्मा बना देंदा है, ईश्वर बना देंदा है। भगती, भगत कहिंदा है हे प्रभु ठीक है, मैं बूंद हां तू सागर है, मैं जर्रा हां तू सूरज है, ठीक है लेकिन फिर भी मैं तेरी ही बूंद हां, किसी होर दी नहीं, मैं तेरी ही किरण हां ऐ सूरज, किसी होर दी नहीं। इस वास्ते ऐलानिया कह देंदा है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कह, तेरे ते मेरे च की अंतर है, बराबरी। प्रेम दे जद बराबरी आउंदी है मानव मानव बनदा, भगती दे जद बराबरी आउंदी है मनुख परमात्मा हो जांदा, हर का भगत सो हर ही जया। प्रत्यक्ष रूप दे च, साकार रूप दे च किधरे परमात्मा दे दर्शन करने न, तो भगत दे दर्शन भगवान दे दर्शन। संत राम में भेद कछ नाहीं, एक जन कई मैं लाख करोड़ी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने संत ते राम विच कोई भेद नहीं, ये दोवें इक्को ही है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, भगत रविदास। कनक कटक जल तरंग जैसा, तू एक सोने की शिला है, मैं उसो बनया होया गहना। तू सागर है, मैं उसकी एक तरंग हां लहर, ठीक है मैं लहर हां पर मैं तेरी ही लहर, ठीक है मैं किरण हां पर मैं ऐ सूरज तेरी ही किरण हां, तेरे ते मेरे च की अंतर। इत्थे भगत अपने विच भगवान दे दर्शन करता है। भगत कबीर कहिंदे ने बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई, मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, ईश्वर होना। इस तो बिना इसकी तृप्ति नहीं होगी, भटकदा भी रहेगा, जमदा ते मरदा भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, संतापग्रस्त भी रहेगा, वक्ती तौर पर आनंद रस भी बनता रहेगा लेकिन कुरलांदा भी रहेगा। क्योंकि जितने चिर तक मंजिल की प्राप्ति नहीं आती, मंजिल की है मनुख का परमात्मा होना, मनुख हुक्मरान हो गया, धनवान हो गया, चोटी का साइंटिस्ट हो गया, बड़े तो बड़ा पंडित हो गया, विद्वान हो गया, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है मनुख का भगवान होना। शम्स तबरेज़ खुदा दे अगों प्रार्थना करते हैं, मन तो शोधी तो मन शोधम, मन जान शोधी तो तन शोधम, ई कस ना गोयद बाद अजें मन दी गरम तो दी गरी। बड़ा एक महान फकीर होया ईरान विच, कहिंदा खुदा तू मैं हो जावे, मैं तू हो जाव, मैं तन हो जावा तू जान हो जावे, फिर कोई ए ना आखे खुदा कोई हो रहे ते शब्द तबरेज़।

पारा। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाहीं, फिर ज्यों बेतालिया। नाम नु ता सुने नहीं, बस तुका कड कड़ के लड़ना शुरू कर दिता। महाराज भाई साहब ने कहा, वेद कते भुलाए कै मोए लालच दुनी शैताने, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोलाने। उस कंसेप्ट च गल कही गई, वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान कपिख है, हर चीज देखिए। पर महाराज अगे बचन कर रहे, पौन आहार, पौन अहवा जी, आहार दर्थ आप सारे जाने, खुराक भोजन। कई ऐसे ने जेड़े सूक्ष्म हो जाते ने, रोटी नहीं खाते, वह पौन नू आहार बनाते ने। महाराज कहते मैं ये भी देखे जी, पौन आहारी जति जत तार, जेड़े जमांदरू बाल जति जिन्होंने यत नू धारण किया, उन्होंने ग्रिस्त नू अपनाया ही नहीं। महाराज कहते ने पौन आहार जति जत तार, सबै सो विचार सबै दर ते सारे। कई ने पाठ कट्ठा किया सो विचार, जे थोड़ा जा वेख लीए, चंगे विचार वाले बंदे जेड़े चंगे ख्याल देन वाले सन समाज। महाराज कहते ने पौन आहार हवा नू भखण वाले, जत नू धारण करन वाले, सबै सो विचार हजारक हजारक, हजारां कू एक नहीं, हजारा पौन हारी देखे, हजारा जति देखे, हजारा जेड़े ने अपने आप नू ब्रह्मचारी कहण वाले देखे, समय सो विचार हजार के देखे, हजारा देखे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तुसी ये तीन तुकां च तीन पंक्तियां च ये बख्शिश कीती, पर आखिर तीर्थां दा इशनान भी तां कर्म बड़ा कठिन है ना। दया करनी, दम रखना, दमन करना, संयम रखना, करन बड़े औखे ने। सच्चे पातशाह किताबां पढ़नियां, ग्रंथ पढ़ने, बड़ी एनर्जी लगती। तुसी ये भी कह दिता पौन हारी, कोई साधना है तां पौन दा हार कीता, बड़ी कमाई होवे तां ही बंदा जीव दे चस्के ते रोटी ते काबू पाए। महाराज जिन्हां ने ग्रिस्त भी नहीं धारण किया, अपने आप नूं रोक के रखिया, पौन आहार जति जत तार, समय सो विचार हजार के देख, हजारा। महाराज कहते मैं देखे जी, सतगुरु फिर का कहना की चाहते हो? महाराज कहते बस इको गल कहनी चाहना, श्री भगवान भजे बिन भूपत। दान कर रहा पर सिमरन नहीं कर रहा, विखावे दा तीर्थ नहा रहा पर अंदर दी मैल नहीं धो रहा, बार मुखी इंद्रिया दा दमन करदा पिया पर फुरने ते काबू कोई नहीं, मनवा काबू च नहीं। महाराज कहने बार मुखी पाठ करदा, पाठ जबान कर दी, मन पता नहीं की पढ़ी जांदा। देखो इस गल नू सुनो, गुरु साहब जी की ए खंडन दी गल थोड़ा जी, ए ता महाराज सुमार्ग पांदे पए आ, सही रस्ता दस रहे। सतगुरु कहंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत, श्री भगवान परमात्मा वाहगुरु जी सब दा श्रोमणी, माया दा भी पति। इत्थे भूपत दर्थ दास ने वाहगुरु मालक कीता, क्योंकि इहदे विच राजसाज दा जिक्र नहीं, इह तां सारा कर्मकांडियां उहनां दा जिक्र है जिहड़े कठिन तप कर रहे आ। गुरु साहिब कहंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत, उस मालक वाहगुरु दे सिमरन तो बिना, ओदे भजन तो बिना। महाराज कहंदे ने एक रति बिन, एक विच रत्ते तो बिना, रत्ती नहीं सिमरन रत्ते जाना, एक रति बिन एक सिमरन विच रंगण तो बिना, एक ना लेख है, एक ना लेख है। महाराज कहंदे जेड़े मैं उत्ते गिण के आया कि तीर्थ नान दया दमदान, एक ना लेख है, सो संयम नेम अनेक बशेख है, एक ना लेख है। इस तरह अर्थ होणगे, इन्हां विचों एक भी लेखे च नहीं। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान कपेख है, एक ना लेख है, सिमरन तो बिना एक भी लेखे च नहीं। पौन आहार जते जते जतार, सब ऐसो विचार हजार का देख है पर एक ना लेख है। इस तरह अर्थ सारे सवैये दे होणगे, इन्हां विचों एक सिमरन तो बिना, बंदगी तो बिना, नाम तो बिना, कुछ लेखे च की पएगा तेरे। हजूर सच्चे पातशाह इहदे सारे सवैये दा दाता जी दा निचोड़ ए वे जी, बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरै, भगत नामदेव जी गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द, बनारस विच उल्ट के तप करे ते उत्थे मर भी जाए।
बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे जौंदा अग भी साड़ दे तूनिया च। बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे काया कल्प की जय। कल्प चिरजीवी रखने लई दवाइयां खानिया जड़ियां बूटियां जोग मत वालियां। काया कल्प की जय असमेद जग की जय। आजे इस सवैये दे अर्थ ओ जग करे जिदे विच घोड़ियां दी बली दित्ती जांदी असमेद जग। असमेद जग की जय सोना गर्भदान की जय। सोना फरूट विच रख के जिवें आ पेठा नहीं हुंदा चीर के विच सोना भर दिता उत्तों बंद कर दिता किसी नूं पता ना लगे। गुरु ग्रंथ साहिब दुआई देख के कहिंदे नूं लोको समझो इस गल नूं बनारसी तीर तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय असमेद जाग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूछे श्री भगवान भजे बिन पूपत। राम नाम सर तऊ न पूछे छोड़ छोड़ रे पखंडी मन कपट न की जय खरका नाम नित नित दी जय। गंगा जो गोदावर जाइये कुंभ जो केदारा नहाइये गोमती साहस गौ दान की जय। हजारा गावां दा दान कर दे तू गोमती दे कंडे ए भी नदी। महाराज कहिंदे आत्म जो नरमाइल की जय आप बराबर कंचन दी जय राम नाम सर तऊ न पूछे। अस दान गज दान सेजा नारी भूम दान ऐसो दान नितो नित की जय। घोड़िया दा दान कर गवां दा दान कर इस्त्री दा दान कर पर सच्चे पातशाह कहिंदे ने सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।

गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संत नू सिपाही बनाया और सिपाही दा प्रतीक है शस्त्र, तो शस्त्र पहना दिता। किरपान इस वास्ते पहननी है, इस छोटी जी किरपान नाल कोई मैदानी जंग दे लड़ना नहीं, पर ये छोटी जी किरपान एहसास करांदी रहे कि असी सिपाही हां, सिपाही हां। और इस तरह दा अंदर वीर रस बनिया रहे तो फिर मनुख अपनी भी रक्षा कर सकता है, कौम की भी रक्षा कर सकता है, देश की भी रक्षा कर सकता है, और किसी तरह का भी कोई हथियार हो उस नाल रक्षा करेगा। लेकिन सिपाही होने का भाव तो बनिया रहे, अंदर वीर रस ते बनिया रहे, वो तो ताही हो सकता है कि हर वक्त मनुख ने कोई शस्त्र पहने होवे। तो इस तरह किरपान पहनने की, धारण करने की सानू ताकीद की गई। भाई साहब भाई नंद लाल कहने निशान है सिखी ई पंज हरफ काफ, के हर गिज ना वाशद ई पंज माफ, कड़ा कार दो का चकंगा बिना, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। अज दे साइंस युग दे विज्ञानिक युग दे तरक खड़ी होंदी है कि नाखून कटदे हो ये भी प्राकृतिक ने, की होया अगर केस कटे जा रहे हैं, की होया अगर केसा का मुंडन है, आखिर नाखुना का भी तो मुंडन कर दें। नाखुना का वो हिस्सा कटिया जाता है जो मुर्गा ने मर चुके ने, जिमें घर बिच गया है, चलाना कर गया है, तो मुर्दे नू घर बिच नहीं रखते, और घर बिच रखांगे तो बदबू, घर बिच रखांगे तो गलाजत, घर बिच रखांगे तो सारा घर मरगट बनेगा। इस वास्ते मुर्दे नू मरगट घाट ले जांदे हैं और जला के खाक कर दें। नाखून जो मुर्दा हो जाते ने मैल नाल भर जाते हैं, और बीमारियां दे ओ जन्मदाते बनते हैं। जिंदा नाखून जो मांस के नाल जुड़े हुए है, जिंदा है, उसनू कटांगे तो खून निकलेगा, उसनू कटांगे तो पीड़ होगी, और जो अगे बढ़ चुके हैं मैल नाल भर गए कि मुर्गा है। इस नाखून नू कटना मैल नू कटना है, परे सुटना है। प्रकृति ने जब उसनू खत्म कर दिता है, मुर्दा कर दिता है, तो मुर्दा तो शरीर तो अंग तो एक पासे करना पड़ेगा, जैसे घर के वेड़े तो मुर्दे नू एक पासे करते हैं। हां केस भी कुछ मरदे हैं, पर सानू किस तरह पता चलेगा किहड़े केस मुर्दा हो चुके हैं, दाड़े दे केड़े वाल मुर्दा हो चुके हैं, सिर दे केड़े केस मुर्दा हो चुके हैं। कि साढ़े हत्थां नू नहीं पता चलता, कंगे नू पता चलता। जैसे जैसे असी कंगा फेरदे हां मुर्दा केस झड़ जांदे ने, निकल जांदे ने। जैसे नाखून रोज वधदे ने, रोज नवे केस पैदा हुंदे ने और पुराने झड़दे ने। केसां दा जन्म ते मरण जीवन भर चलदा रहिंदा है। कुछ ते सियाणे कहिंदे ने कि मुर्दे दे भी केस वधदे ने और नाखून वधदे। खैर जो कुछ भी है, जो केस मुर्दा ने कंगे दे राही झड़ जांदे निकल जांदे, और जो जिंदा ने ओ सवर जांदे सवर जांदे। प्रकृति केसा नू एक सीमा तक रखती है, चाहे वह मुखड़े देने चाहे वह सिर देने। असी देखते हैं जो केसा का मुंडन करते ने आखिरी दवा तक केस उन्होंने वधदे ने, दाड़ा मुने है चौथे पंजवें दिन फिर दाड़ा आ गया, फिर मुने है चौथे पंजवें दिन फिर आ गया। लेकिन इस मुंडन नो, इस मुंडन नो कोई छोड़ देवे तो दाढ़ी एक सीमा ते आके रुक जाती है और जीवन भर उथे जो है रुकी रहती है, उस तो अगे जो है नहीं जाती। केस भावें नवे जन्म दे रहे हैं,

0: झड़ते रहते ने,
1: लेकिन लंबाई एक सीमा तक ही आखिरी दमा तक जो है रहती है। प्रकृति ने इस तरह नाप तोल के हर एक नु जो है केस देते हुए ने, केसा दा मुंडन प्रकृति नाल जंग है और इस जंग विच हार ही होंदी है, जित नहीं आउंदी, क्योंकि आखिरी दमा तक केस निकलते रहते ने, वधदे रहते। जैसे जैसे सिर विच आत्म ज्योति खत्म होंदी गई, नाम अभ्यास खत्म होंदा गया, केसा दी कदर भी घटदी गई। अज भी असी देखते हैं कि रामलीला विच राम पेश करना है, स्टेज ते विश्वामित्र नु पेश करना है, विशिष्ट जी नु पेश करना है, तो जोड़े भी चाहिए ने, दाड़ियां भी चाहिए ने, और अक्सर बाजार तो नकली जोड़े नकली दाड़ियां खरीद के लिया जाए। असी इस गल का माण कर सकते हैं कि साढ़े सिर ते जोड़ा असली है राम वर्गा, साढ़े मुखड़े ते दाड़ा असली है विश्वामित्र जैसा, विशिष्ट जैसा, अवतारा का स्वरूप, ऋषि मुनिया का स्वरूप। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साड़ी झोली दे पाया है। हाँ, जब कोई ऋषि होने तो, मुनि होने तो, संत होने तो थले जाता है, मनुखता तो थले गिरता है, तो जब थले ही गिर गया तो फिर हुण केसां दी लोड़ भी है। अज सारी दुनिया विच केसां दा मुंडन है। थोड़ी जिया कौम जिसनों असी सिख कहिंदे आ, केस इस कोली दिखाई देंदे ने, या कुछ थोड़ा जिहा साधु समाज। वैसे बगौर मुताला करिए, मुहम्मद साहब केसाधारी सन, हजरत ईसा केसाधारी सन, और इसे तरीके नाल भारत दे तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष केसाधारी सन। और सिर्फ केसाधारी नहीं, बहुत अवतारी पुरुष शस्त्रधारी भी सन, जैसे धनुषबाण श्री राम कोल है, जैसे सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, जैसे तलवार मोहम्मद साहब दे जो है हाथ दे चाहे, और इसे तरीके नाल परशुराम कोल कुलाड़ा है, बरछा है, हनुमान दे कोल गदा है, गदा विष्णु जी कोल भी है, और इस तरीके नाल असी देखते हैं बहुते अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुष धारी ने, केसाधारी ने। जैसे जैसे पैगंबरां नूं अवतारां नूं मनना घटता गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटता गया, क्योंकि जितनी मिकदार विच मनुख दा अहंकार वधदा है, उतनी ही मिकदार विच अवतार दा सत्कार घटदा है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा, आदर नहीं रहा, उस दे पिछे चलण दी लोड़ की है। हाँ, कदी कदी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर देता, नकली जूड़ा सिर ते रख के, नकली दाड़ा मुखड़े ते लगा के इस तरह नकल पेश कर देती, लेकिन पेश करना भी इस गल का सबूत है कि जूड़ा केस इन्हां अवतारी पुरुषां ने धारण किए हुए सन, और जे इन्हां दी उस जमाने विच लोड़ सी तो अज भी लोड़ है। अगर अज लोड़ नहीं है तो फिर जूड़े तो बिना ही राम पेश करना चाहिए, दाड़े तो बिना विश्वामित्र ते विशिष्ट नूं तेज ते पेश करना चाहिए। ऋषि मुनियां दा स्वरूप, पैगंबरां दा स्वरूप, गुरु अवतारां दा स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान किया, और प्रदान करके साफ आगविता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिवें चंगी औलाद मां बाप दे नाम नूं रोशन कर दीए, तिवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे, ऐ खालसा तेरा जीवन इतना उच्चा है और तू ऐसा संत स्वरूप बनया, तू मैनू चार चंद ला दिते ने, तू मैनू सजा दिता है माण नाल सतगुरु। इत्थे तक कहिंदे ने, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे हैं। किसी नूं शक ना पवे कि खुशामद कीती जा रही है या गल वधा के आखी जा रही है, तो महाराज कहने या में रंच न मिथ्या बाकी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नो साखी करके कह रहे हैं, साक्षी करके कह रहे हैं, गवाही दे के कह रहे हैं कि तेरे ते मेरे कोई भेद नहीं, तू मेरा रूप हो गया। मन करके तन करके जब वाकई बाणी हृदय प्रवेश कर जाए, रोम रोम दे प्रवेश कर जाए, तो हृदय गुरु वर्गा बन गया। और तन देते जब ककार धारण कर ले तो तन गुरु वर्गा बन गया। तो गुरु नु मान नाल कहना पैंदा है कि मेरा अपना रूप, ये मेरा अपना रूप। और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसे का सत्कार करना पैंदा है। खालसे नु सज्जन कहंदे ने, मित्र कहंदे ने, गुरपूरा करके कहंदे ने, और खालसे नु अपना स्वरूप करके जो है बयान कर देने। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ये अमर देन, ये अदुत्ती देन, छह देश है देन, आज जगत के चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन छह देश है देन सतगुरु की बात को धारण करने का भी माहौल बनना आरंभ होया है। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की इस देन को अमर देन समझ के, प्रकृति की देन समझ के, परमात्मा की देन समझ के हर मनुख कबूल करेगा, अपनाएगा। अरदास है उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणा कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ए दास, गुरु नानक की ये बख्शिश झोली दे संभाल के रख सकी है, ताकि गुरु नानक धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साडे ते माण कर सकन और मान नाल कह सकन खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, मैं खालसे देखा खालसा मेरे विच है, हूं कोई भेद नहीं रहा, और रंजक मात्र भी भेद नहीं रहा। या में रंज न मिथया भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साहिब।
0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Family Care Pharmacy.
3: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स, हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जां कॉल किरण @604-581-1900।